रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आ

सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे।

क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे. रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM.

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-400-64-1800-180-7178 1-800-180-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन
2: रेडियो चुनार।

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम
1: और इस फ्रीक्वेंसी पर मजेदार शो सब मैं हूँ आपका साथी जॉक्सिस। और दोस्तों याद रखिए, आपने फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना है रेडियो चैनल के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर जाइए, सर्च कीजिए रेडियो चुनाव 90.4 एफएम, आप गूगल भी कर सकते हैं। और फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट्स में प्यार जरूर दें। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। लॉग इन करें www.radiochunar.com पर ताकि आप हमें सुन पाए घर में, गाड़ी में या ऑफिस में। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार, सिटे हुक्ड, मेरे यार धड़काते रहो।

0: Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update. Weather update.
3: दोस्तों रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर जॉक्स उसके साथ मजेदार शो असफर ब्रदर आज का वेदर
2: रेडियो चुनार वेदर अपडेट
3: जी हाँ, क्या क्या था आज का वेदर आइए आपको बताते हैं, पहुंचाते हैं आप तक आज का वेदर अपडेट। वैसे मौसम तो खुशनुमा होगा लेकिन बादल बीच बीच में सूरज के साथ घमासान जरूर मचाएंगे, लेकिन सूरज फिर भी फायर नहीं वाइल्ड फायर बनकर चमकेगा। इस पार्टली क्लाउडी फॉर टुडे। आज दिन का टेम्परेचर जो मैक्सिमम रहने वाला है दैट विल गो अप टू 30 डिग्री सेल्सियस। वही रेडियो रखो कान के नजदीक क्योंकि यूवी इंडेक्स है अभी वीक। ह्यूमिडिटी 75%, विंड स्पीड 2 km/h, विजिबिलिटी 8 km। आज का सनराइज हुआ 5:41 पर, आज का सनसेट होगा 7:35 पर। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन मस्तार शो व्हाट्सएप जॉक्स के साथ आप भी हिस्सा जरूर लें। 8899-04-9904 नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। हर दिल की धड़कन को धड़काए, अपनी बात हम तक पहुंचाए, क्या है आपके व्यूज इमोशंस एंड थॉट्स हमें जरूर बताए। हम पहुंचाएंगे आपकी बात वहां वहां जहां जहां जाती है रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी। मेरी जान हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर सिरे है

0: Zeus. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: व्हाट्सएप पे
3: तो रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाता है। कह दिया नहीं और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जानी वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए बात करते हैं नए रूल्स। जी हाँ, एक नया बिल जो पास हुआ पार्लियामेंट में। अब गॉड फॉरबिडन अगर हमारे तिरंगे की यानी इंडियन फ्लैग की या वंदे मातरम या जन गण मन कोई भी गॉड फॉरबिडन इंसल्ट करता है तो उसे होगी 3 साल की जेल। ये नई बिल जो है मौजूदा हुकूमत की तरफ से पास की गई है और जो भी देश विरोधी है उनके लिए एक नया अलार्म, नई वार्निंग कि भैया सुधर जाओ नहीं तो सीधा जा पड़ोगे जेल में। रेडियो शो 90.4 FM वायरल था तभी व्हाट्सएप पर है।

0: कौन आया?
1: दोस्तों रेडियो चैनल 90.4 FM शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में श्री अमरनाथ जी यात्रा अपडेट्स। यहाँ 4 लाख से ज्यादा यात्री जो है अपनी यात्रा संपूर्ण कर चुके हैं और वही दोनों मार्गों से यात्री जो है आज भी यात्रा के सफर पर निकल चुके हैं। बीच बीच में कंस्ट्रक्शन का काम जो है आपको देखने को मिल सकता है, वही गवर्नमेंट प्रशासन की तरफ से पूरी पुष्टि की गई है कि यात्रा जो है स्मूथली जारी रहे। बात करें वेदर अपडेट की, जैसा कि हमने स्टार में ही बताया था, वेदर क्लाउडी है यहाँ पर। तो अमरनाथ जो है हाइट पर मौजूद है तकरीबन 16,000 फीट, और वही अगर हम अमरनाथ के आसपास और एडजॉइनिंग एरियाज की बात करें तो जाहिर सी बात है

मौसम जो है अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दूं अगर यात्रा पर आप निकल चुके हैं तो मिनिमम 9 और मैक्सिमम 13 डिग्रीज आपके सामने आ सकता है। टीम रेडियो 90.4 FM, आपकी यात्रा संपूर्ण और सफल हो।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: आरजे ज्यूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम मजदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन, धड़काते रहो।

0: Zeus. Calling out.
1: Radio Tonight 90.4 FM up in Jaikar, I'm a star show. What's up? मैं हूं आपका साथी आरजेस सर शेयर का हिस्सा अभी बने अपनी बात हम तक पहुंचाए 8899904904 इस नंबर जी हां दोस्तों रेडियो चैनल 90.4 एफएम पर कॉल करें व्हाट्सएप या करें टेक्स्ट मैसेज बस यही कि दिलों के तार दिलों से जरूर जोड़े डीएम भी कर सकते हैं आप डीएम करने के लिए इंस्टाग्राम पर मैं रहूंगा जॉक ज्यूस सर्च कर सकते हैं आप या सर्च कर सकते हैं ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो और इस फ्रीक्वेंसी हमारा ऐप डाउनलोड जरूर करें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में यहाँ व्हाट्सएप शो में आज का टॉपिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आपने जरूर सुना होगा ये मत खाओ ये मत पियो इससे प्रॉब्लम होगी यहाँ मत बैठो धूल है या गर्दा उड़ा दिए भैया जी तब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है भैया अगर हम देखें तो कितनी अफवाहें हैं कुछ खाओ कुछ पियो धुएं में जाओ आ वापस आओ या बहुत सारे लोग तो हवा को भी जिम्मेदार बनवाते हैं कि हवा खाओगे तब भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाओगे अब ये कितना सच और कितना झूठ क्या कुछ करने की जरूरत है और किस तरह से हम अपने लंग्स को हेल्दी रखेंगे आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की यहाँ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जिससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग स्मोक करके भी अपने लंग्स को अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं वहीं आजकल का युवा जो वेपिंग वगैरह का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपने लंग्स को नाकारा कर देता है जरूरी है हम अपने सभी ऑर्गन्स का ख्याल रखें क्योंकि जब शरीर हेल्दी दिमाग हेल्दी तो बॉडी और बंदा चुस्त दुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आज के व्हाट्सएप शो का टॉपिक हॉट फ्रीक्वेंसी पर ड्रग्स के साथ तड़का तेरा

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: कौन आया?
1: ज्यूस।
2: रेडियो चैनल 90.4 एफएम द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो। व्हाट्सअप व्हाट्सअप शो के सफर में मैं हूँ आपका हम सफर और चीज सर। बात हो रही है आज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। जी हाँ, कैसे हम खुद को बचा सकते हैं, कैसे अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और कैसे अपने रेस्प

रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। आज हो रही है बात रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। देखिए, कुछ कॉमन चीजें, कुछ कॉमन टाइप्स या कुछ ऐसी आदतें जो इंसान के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर बुरा असर डालती है, टबैको स्मोक करना या वेपिंग वगैरह। जैसा कि मैंने इनिशियली कहा था कि बहुत सारे लोग कूल बनने के चक्कर में अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, अपने जिस्म को फूल बनाते हैं। रिसेंटली एक वाक्य पेश आया जहां पर एक औरत के लंग्स जो कि वेप कर रही थी, तकरीबन 1 लीटर के करीब फ्लूइड निकाला गया। रीजन सिंपल था, वेपिंग की वजह से उन्होंने इस प्रॉब्लम को जगह दी और वही डॉक्टर्स का कहना है कि वेपिंग कैन कॉज मोर डैमेज देन स्मोकिंग। और वही अगर हम बात करें तो कॉमन टाइप्स जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में देखने को मिलते हैं, दैट्स एस्मा, COPD जिसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन भी कहा जाता है, और उसके अलावा निमोनिया या बाकी जो इफेक्ट्स हैं जो कि लंग्स पर पड़ते हैं। केमिकल फ्यूम्स या स्मोकिंग वगैरह जो है मेन वजह मानी जाती है इन डिसऑर्डर्स की। और इन चीजों से बचने के लिए व्हाट बेस्ट वी कैन डू टू आवरसेल्फ्स दैट वी कैन स्टॉप स्मोकिंग, वी कैन गेट वैक्सीनेटेड। अपने हाथ को क्लीन रखना, सैनिटेशन का ख्याल रखना, और वही अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ ज़्यादा हार्मफुल पार्टिकल्स है या कहीं पर डस्ट वगैरह ज़्यादा है तो मास्क का इस्तेमाल करना, और ए जो है उसे फिल्टर रखना या साफ सुथरी जगह और सैनिटेशन का ख्याल रखना। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार, बातचीत जारी है। मेरे यार सिटी हक धड़काते रहो।

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: News.
1: कौन आया?
2: बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़।
3: रेडियो चना 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन शो सब और वो सब शो में बॉलीवुड न्यूज़,
2: बॉलीवुड न्यूज़।
3: बॉलीवुड न्यूज में आइए बात करते हैं द हॉट एंड सिजनिंग कपल बॉलीवुड दीपिका पादुकोण। जी हाँ, दीपिका पादुकोण और उनके हस्बैंड रणवीर जा पहुंचे एक इवेंट में, जहां पर दीपिका ने अपनी नई फिल्म की मशहूरी करनी थी, लेकिन दीपिका कर बैठी फ्लॉन्ट अपना बेबी बम। अब बाड़ी की फिटनेस देखकर और उनका फ्लैक्स देखकर नेटिजन बोलने लगे कि भैया ये तो फेक है, ये कोई प्रेगनेंसी नहीं है, बल्कि मशहूरी के लिए अपनी प्रेगनेंसी को फेक कर रही है दीपिका। अब इस पर वोटिंग पे वोटिंग चल रही है और लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी। वैसे आपका क्या विचार है हमें जरूर बताएं, अपने विचार का आचार हमें भी परोसे। 9999904904 इज द नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन से धड़काते रहो।

Hey, it's Vedhar Chediva on your radio channel 90.4 FM.

0: Zeus.
1: Kon aaya?
2: Bollywood News.
3: दोस्तों रेडियो चुनाव 90.4 एफएम मस्तार शो व्हाट्सअप बॉलीवुड न्यूज़। बॉलीवुड न्यूज़ में अब हम करने वाले हैं चर्चा सुहेल खान की।

0: Kom nou ja.
1: Tech Talks.
2: With RC. The story to rock your heart is Frequency Per Tech Talks.
3: Tech Talks.
2: एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम करते हैं टेक अपडेट्स की बात. तो आइए आपको बताते हैं कि अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें क्यू और WETY वाला कीबोर्ड पसंद है और वो कीपैड वाला कीबोर्ड आज भी उन्हें विचलित करता है, उनके दिल को भाता है. वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसे फ़ोन्स पसंद आते हैं जहां टच स्क्रीन तो हो लेकिन साथ ही साथ कीबोर्ड भी मौजूद हो. अब रियल कीज कुछ अलग ही फील देती है और इसी बात पर गौर कर रहा है Zhenhua Technologies from China. कहा जा रहा है कि वापस ला रहे हैं और ब्लैकबेरी क्लासिक जैसा एक फोन जो कि लोगों को मिलने वाला है, जिस पर काम बहुत पहले से चल रहा है. नाउ इट्स ऑन द कार्ड्स बिकॉज रिसर्च कहती है और R&D हमें बताता है कि लोगों को कीपैड वाले फोन बहुत पसंद आ रहे हैं और उसी के चलते चाइनीज कंपनियां इन फोन्स पर काम कर रही हैं. क्या आप कीपैड वाला फोन जो है खरीदेंगे जहां पर ABCDEFGHI वाला कीपैड आपके

सामने हो और पुराने तरीके से आप फिर से टाइप करके मैसेज लिखे। और साथ ही साथ ये भी बताने वाली बात है कि जो भी गेमिंग के दीवाने हैं अब गेम वो रेंट कर पाएंगे। देखिए पहले हम सीडीज वगैरह खरीदते थे, PS5, PS4, PS3, PS2, ऐसे करके हम गेम्स सीडीज में मौजूद रहती थी जो हम खरीदते थे। नाउ सीडी वाला सिस्टम जो है कम्प्लीटली ख़त्म होगा, बल्कि ऑनलाइन ही गेम्स मौजूद रहेंगे। जस्ट इमेजिन आपने गेम खेलनी है लेकिन वो गेम इंटरनेट से डाउन कर दी गई है तो कहाँ से खेलेंगे। अब ये कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, जहाँ पर गेमर्स का कहना है कि भैया हमें चाहिए सीडी वाला माहौल ताकि हम अपने हिसाब से खेल पाए और जब मन करे तब, जिस साल में खुश हो तब खेले। और इस पर अभी जो है डिबेट चल रही है एंड कंपनीज आर गिविंग इट अ थॉट कि क्या हम ऑनलाइन रेंटल वाला सिस्टम बनाएं या सीडी वाला ही रहने दे। फिलहाल पते की बात यह है दैट वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज फ्रॉम कश्मीर मुजम्मिल इब्राहिम मॉडलिंग एंड शोकेसिंग हिज लवलीस्ट टैलेंट इन द सॉन्ग। इट्स अ ट्रैक बाय रिची रिच, आप सभी सुनने वालों के लिए। इट विल बी फॉलोड बाय अदर ट्रैक्स एज वेल। तो कहीं नहीं जाना, मेरी जान नहीं चलेगा कोई बहाना, हर दिल की धड़कन को आपने है धड़काना। चौकसी उसके साथ रेडियो चुनाव, सटे हक धड़काते रहो।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: कौन आया?
1: जी हाँ, जिसका नहीं होता इंतजार वो घड़ी तो आ गई है, आ गया वक्त आज के लिए इजाजत लेने का। लेकिन बता दूं आपको, हम जा रहे हैं लेकिन आपसे जुड़ने आ रही है और जे दीवा लेकर शोचन और बीर सिंह बीट्स ऑन रिपीट। सो दिस इज बैड बॉय ज़ू साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो चुनार सुनते रहिए, प्यार बांटते रहिए। टिल वी मीट अगेन, कीप योर हेड्स हाई, वर्क ऑल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू ऑल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुशबाश, मा सलामा।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harshi Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

जी आज शुरू तो हो चुका है आपका और मेरा सफर, लेके मेरे शो के हम सफर यानी मेरी पूरी वाइबो ट्राइब बीट्स और फिर

बीट्स ऑन रिपीट चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे होंगे ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। ढेर सारी बातें मस्ती मजाक फन एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। Peace on repeat, well I'm super duper excited what's happening around here and there, where to go here and there, I'm here, don't fear and I believe that ki darne ki kya baat hai, hum aapke saath hai, aap mere saath hai, hum saath saath hai. बस यही है, कुछ इरादा ये है कि सुबह उठो और एक बेहतरीन से भी बेहतरीन सी थॉट जिसे आपने अपने दिन की शुरुआत किया नहीं वाला कि नहीं जी बस इतना चाहिए हमको जिंदा रहने के लिए और इतना ही तो है कि हम अपने बेहतर दिन की शुरुआत करें। तो बताइए मुझे क्या था वो सुबह सुबह का एक्सपीरियंस, या फिर आप जब काम के लिए जा रहे थे सुबह तो क्या लगी आपको, चीज़ें कैसी डिफरेंट थी, एंड व्हाट इज दैट वन थिंग यू वांट टू कन्वे एंड आपको लगता है कि आप पहुंचा सकते हैं मेरे थ्रू वहां वहां तक जहां जहां तक पहुंचती है रेडियो चुनार की आवाज़। अब मैं बताऊं कि आप बोलोगे कि पूरी दुनिया कैसे सुनेंगे, पर सुन सकती है क्योंकि हमारी ऐप है, यानी कि स्पेशल ऐप जो कि पूरी दुनिया में आप डाउनलोड करके सुन सकते हो रेडियो चुनार को, मुझे लाइव सुन सकते हो। बस ये कि आपको एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर से रेडियो चुनार की ऐप को डाउनलोड करना है, रेडियो चुनार 90.4 FM, और उसको सुनना है और फिर फीडबैक दे सकते हैं आपकी क्या कुछ हो रहा है दुनिया में। अब है ना मज़े की बात कि आप दुनिया में कहीं पर भी मुझे सुन सकते हैं, कश्मीर के बारे में जानकारी पा सकते, पूरी दुनिया के बारे में जानकारी पा सकते। बस ये कि ज़रूरी है कि मैं अकेले हूँ, मज़ा नहीं आता, यानी कि मेरी पूरी वाइब मेरे साथ होती है, तभी तो ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो जल्दी से 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और बताइए मुझे क्या है आपके हालात, जज्बात,

Sorry, me. Beats on repeat, show चुनार beats आप enjoy कर रहे हैं only on radio चुनार 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक fun भी है, entertainment है, but information सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं. And we are talking about National Highway of Jammu and Kashmir, National Highway जो कि both sides से open है traffic movement के लिए. And आपको बता दें कि जो recently landslides, shooting stones की वजह से रास्ता खराब हो गया था, वो फिर से maintain हो गया है. अभी आप आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू. आप अपना ट्रैवल कंप्लीट करके आप आराम से जा सकते हैं, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं. बस बी केयरफुल, जो एडवाइजरी दी गई है उसके मुताबिक ही आप अपना जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करें. बिकॉज वी ऑल नो दैट श्री अमरनाथ जी यात्रा जो कि 3 जुलाई से स्टार्ट हुई, उसके चलते अभी भी एक एडवाइजरी जो दी गई है 3 जुलाई से, एंड दैट इज कि आप जो हैवी मोटर व्हीकल्स है वो सुबह से 7:30 तक शाम के चल सकते हैं, एंड लाइट मोटर व्हीकल्स एंड वो चल सकते हैं सुबह से लेकर बराबर 11:30 तक शाम. एंड उसके अलावा और जो बाकी गाइडलाइंस है वो आपको, जी हाँ, ट्रैफिक जो पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल रूम है वहाँ से मिलेगी. तो फिलहाल के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, हमें सुन रहे, कुछ बताना चाहते हैं, दिल से कुछ है आपकी कोई बात, हम तक पहुँचाना चाहते हैं, हम बस मैं यही हूँ. 8 9 0 4 9 0 4 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो का हिस्सा बन जाइए. देखिए, आइसक्रीम खाइए, कश्मीर आइए, जाइए कश्मीर से जम्मू, बस अपना दिमाग ठंडा रखिए, क्योंकि आइसक्रीम का काम ही है हमारे दिमाग को ठंडा करना. सो एंजॉय कीजिए इस ट्राई को. फिलहाल आप बताइए कि कहाँ जाने का आपने सोच लिया है, क्या प्लान है. 8 9 0 4 9 0 4 हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1800-7178 1-800-1800-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

देखिए आज रात में तो नहीं, फिलहाल बात हो रही है अभी अभी अभी जी हाँ, बराबर 12 से लेकर 2 बजे तक हम आपसे बात करते हैं और बातें तो होती है, एंड स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट किस बारे में, दोस्ती के बारे में। तो दोस्ती है दो, दोस्त होता ही खास है और दोस्ती से कितना कुछ बदलता है हमारी ज़िंदगी में, और ज़रूरी है कि हम अपने दोस्त को अपने करीब रखें। सो डोंट फील कि आप अकेले हैं, ऑलवेज थिंक कि हमेशा हमारे साथ कोई ऐसा है, चाहे दुनिया में कोई हमें छोड़ दे, कोई हमारे साथ नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज समबडी जो हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होते। बात हो रही है आज फ्रेंडशिप डे के बारे में, आप भी शो का ऐसा बन सकते हैं 8899049 04 बटेक्स व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार बीस का ऐसा बन जाइए।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

शो चुनार बीच सब एंजॉय कर रहे हैं ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम. आधे सारी बातें हो रही है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप डे. देखिए फ्रेंडशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. फ्रेंडशिप जहाँ पर हमें लगता है हमारा दोस्त हमारे लिए कितना खास है. देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा दोस्त हमारे आस पास ही हो. कभी कभार दोस्ती दूर रह कर भी अपनी दोस्ती निभाई जा सकती. इट्स जस्ट दैट यू हैव योर बेस्ट फ्रेंड, यू हैव योर फ्रेंड और आपको हर परेशानी में लगता है कि वही है, हर खुशी में लगता है वही है. सो सवाल ये है कि आपका पसंदीदा या फिर कोई ऐसा शख्स जो आपके बहुत ही खास है, आपके क्लोज है, मुझे बताएं उसका नाम क्या है. 8899 01904 पर एक व्हाट्सएप कीजिए और शो चिनार बीट्स का हिस्सा बन जाइए.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Show Chunar Beats Up enjoy kar rahe hain only on Radio Chunar 90.4 FM. Dei sari baatein ho rahi hain. We are talking about friendship day. Yani ki friendship जो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर होता है, एक ऐसी ब्लेसिंग जहाँ पे मुझे लगता है हम जितनी तारीफ करें अपने उन दोस्तों की जो हमेशा हर मोड पर हर एक समय में हमारे साथ होते हैं एंड दे आर अ रियल कनेक्शन. एंड अगर हम ओवरऑल देखें तो हर कोई फ्रेंडशिप के बारे में बात करते हैं, लेकिन ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोस्त नहीं होते, वो दुश्मन होते हैं हमारे. कुछ ऐसे दोस्त जो हमेशा हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, पर ज़रूरी नहीं है हमेशा वो हमें दिखाए कि हम आपके दोस्त हैं. यानी ऐसे कुछ किस्से होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में जब हमें लगता है कि सही दोस्त हमारा है कौन जो बुरे वक्त में हमारा साथ दे. एक बुरा टाइम आता है, हमें लगता है सब ख़त्म हो रहा है, नहीं, वो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे अजीज होते हैं. एंड दे आर लाइक family to us, they are very close to us, and that real connection wo hamesha hamare sath rehta. And we are celebrating it today, we are celebrating international friendship day. Aapka pasandeeda dost kaun hai, aapka dost kaun hai jise aap miss karte hain, jinse aap pyar karte hain? 8899 0404 call kijiye, text whatsapp kijiye. Show Chunar Beats ka sab enjoy.

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें।

यात्रा से पहले मदिरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

शो चुनार बीट्स का टाइम ख़त्म हो चुका है और हमने आज बात की इंटरनेशनल फ्रेंडशिप के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में जो हमारे साथ हमेशा होते हैं, खड़े होते हैं खुशी में गम में, हमारा पार्ट ज़िंदगी का सबसे बड़ा होते हैं, एंड दे आर ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड. सो वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू एवरीबडी जो हमारे साथ खड़े होते हैं दोस्तों के तौर पे, हमें हमेशा सपोर्ट देते हैं. सो शो चुनार बीट्स में अभी तो टाटा बाय बाय, बट शो म्यूज़िक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है बराबर 1:30 से लेकर 2 बजे तक. आप अपने पसंदीदा ट्रैक सुनेंगे, यानी कि 8899904904 पर आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं. जी हाँ, शो म्यूज़िक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है. आप 8899904904 पर कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड अब एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम। ढेर सारी बातें तो हो रही है बट जसविदा की रिक्वेस्ट आई है इस ट्रैक के लिए फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। जी हाँ, कहानी तो अभी और हमारी भी है। फिलहाल के लिए 2 बजे तक आप शो म्यूजिक ऑन डिमांड एंजॉय कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 8899904904 पर कॉल टेक्स व्हाट्सएप करके आप शो म्यूजिक ऑन डिमांड सुन सकते हैं, शो कैसा बन सकते हैं।

ईशा की रिक्वेस्ट आई है इस ट्रैक के लिए ऑन म्यूजिक ऑन डिमांड, जहाँ पर आप अपने फेवरेट ट्रैक सुनते हैं। तो जल्दी कीजिए 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

जी हाँ, ये ट्रैक जाते जाते हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के लिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन हंगामा करने आई है फुल ऑन ड्रामा असरा, यानी कि शो हंगामा स्टार्ट होने जा रहा बराबर 2 बजे, जहां पर आप शो हंगामा एंजॉय करेंगे 2 से लेकर बराबर 4 बजे तक। फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

गया शो हंगामा जहाँ होता है ड्रामा एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन क्या बजेंगे और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। शो शुरू हो चुका है और देखिए अभी अभी शो शुरू हुआ है, बहुत सी बातें होंगी, क्या ट्रेंडिंग है, क्या चल रहा है, टॉपिक क्या है एंड आधे आधे प्ले होता है कुछ खास कुछ क्रेजी। जरा हंगामा सुना दो, हंगामा शुरू हो चुका है एंड दिस इज वन मोर टेक ऑन इट। मैं हूं अस्रा संतरे की रेडियो सुना 90.4 FM। शो अभी शुरू हुआ है और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Exactly. Let me say and let me talk about the railway update for today. हाँ हाँ, कह रही हूँ मैं कि आज की रेलवे अपडेट ये है कि जो भी लोकल ट्रेन्स है वो एज पर द शेड्यूल है, दैट इज समर टाइम टेबल एंड यू कैन अवेल द समर टाइम टेबल थ्रू एनी ऑफलाइन मोड ऑल्सो रिस्पेक्टिव स्टेशन पर आप जा सकते हैं, वहाँ बिलबोर्ड लगे होते हैं, या इसके अलावा आप ऑनलाइन रेल वन ऐप से, जो कि ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप है, वहाँ से अवेल कर सकते हैं।
1: जिंदगी में होता है सबको एक बार इश्क विश्क प्यार।
0: देखिए, इश्क विश्क तो ठीक है, बट रिस्क नहीं लेने का। रिस्क लेने का यानी कि जो रिस्क होता है वो ये है कि आपकी ट्रेन मिस हो सकती है, आपका सामान खो सकता है। बट देखिए, मैं आपको डरा नहीं रही बल्कि अवेयर कर रही हूँ कि आप जो सवारी है वो अपने सामान की और खुद की खुद जिम्मेदार है।
1: I know you feel it too, अब कर दे करा।
0: सो इट्स बेटर कि आप अपनी ट्रेन को जो है वो आप लाइक एक फॉलो कर सकते हैं कि कहाँ है, कहाँ पहुँची, क्या है, थ्रू द रेल वन ऐप इटसेल्फ, जो ट्रेन बिटवीन स्टेशंस है, लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन्स और कौन सी ट्रेन अवेलेबल है कब, वो भी पता चलता है। बट अभी के लिए अगर बात करें तो 12:37 वाली जो ट्रेन है जो बड़गाम से डिपार्चर होकर बानीहाल की तरफ जाती है, दैट हैज़ बिन कैंसल्ड। उसके अलावा सारी ट्रेन मस्त चालू है। मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो सुनार और कुछ ही ट्रैक से बात करेंगे 1 मिनट फैक्ट के बारे में एंड देन द टॉपिक। ओह माय गॉड, द रूटीन इज सेट। मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि मैंने वादा किया था और जो वादा किया वो निभाना, आई नो मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है बट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक है। अभी की बात करें तो जो 1 मिनट फैक्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, इट इज़ सेड कि जो 95% ऑफ द जो सपने की डिटेल्स होती हैं वो हम जागने के बाद तुरंत भूल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ कि हमें मूवी जैसा सपना आता है कि भाई मैं फिर वहाँ गया था, फिर मैंने ये किया, फिर एक एक डिटेल याद होती है। अगर इतना डिटेल से किसी को सपना याद है तो एक्चुअली वो सपना कितना इलैबोरेटेड होगा और कितना कुछ याद भी है। देखिए बहुत ही ब्रेन इज़ अ वेरी क्रेजी थिंग टू हैव एंड ऑनेस्टली ब्रेन इज़ एन असेट। और जो भी सपने होते हैं वो एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारी बॉडी एक सिग्नल दे रही होती है, या हम दिमाग में सोच रहे होते हैं, या हमारा जो अनकॉन्शियस दिमाग है वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है। मुझे चाहिए ना यार, ना चाहिए प्यार, साइड में। अब देखिए सपने की बात हुई है तो सपना चौधरी का गाना देख रहे हैं, कहां रिलेट किया मैंने, यू कैन सी द कनेक्शन। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम। और गाना यू नहीं बल्कि आपका और मेरा कनेक्शन भी होना चाहिए। 8899904904 इज द नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम। मैं बस यूं गई और यू वापस आए।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 92.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। देखिए, अक्षय कुमार इज कॉलिंग फॉर बिरजू, बट आई एम कॉलिंग फॉर यू गाइस। 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, और बन सकते हैं इस हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा। एंड दिस इज अ रिमाइंडर दैट आप अगर कुछ कहते हैं, एक्सपीरियंस, थॉट्स, या कोई भी ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहते हैं, वो हम वहां तक पहुंचाते हैं जहां जहां तक जाती है रेडियो सुनार की आवाज। मैं मास्टर सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: निकाली है, रस्ते पे खड्डे है, बैलों के अड्डे है, सड़गेले मसले है, तू असले कंगन किधर है बेलाला?
1: सर सर
2: लाला,
3: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चना 90.4 FM।

0: पका रहा है, ओनली बजा रहा है, थोड़ा सिंगिंग विंगिंग भी होवे बाबा।
1: घुमा के उल्टा टोपी टिका के गॉगल लगा के अपना कॉलर चढ़ा के

0: राहुल, व्हाट इज लव? प्यार क्या होता है और प्यार क्या होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे. एंड नॉट जस्ट लव बट एक्चुअली फेथ, लव, होप, ये सारे जो इमोशंस हैं ये एक्चुअली होते कैसे हैं, जो हमें मूवीज में दिखाया गया है, चाहे हम 90s की बात करें, 2000s की बात करें, जो हमें मूवीज में दिखाते हैं. क्योंकि हो सकता है कि एक टीनेजर फॉर एग्जाम्पल जो एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट से अवेयर नहीं होता कि प्यार क्या है.
1: तुम पास आए
0: ला ला ला ला ला. देखिए, मैं मेरा अंदर से वो सिंगिंग वाला फैक्टर है ना, वो ख़त्म नहीं होता. बट ये ज़रूर मैं बताऊंगी कि हम प्यार क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे. बट स्पेसिफिकली ये भी बोलेंगे कि एक टीनेजर जो होता है उसे एक एक्सपोजर कैसे मिलता है कि क्या है प्यार, क्या ये इमोशंस है. बिकॉज ये इमोशंस हमारी ज़िंदगी के बहुत अहम हिस्सा क्रिएट करते हैं. बट सिर्फ और सिर्फ जो हम मूवीज़ देखते हैं उससे हमारा नरेटिव शेप होता है या कुछ और भी है.

कुछ कुछ देखिए जो कुछ भी होता है आप बता सकते हैं 8899-0494 इज नंबर यू कैन कॉल मैसेज टेक्स्ट व्हाट्सएप. और आज का टॉपिक प्यार और उम्मीद यानी कि होप के बारे में है. मैं वस्त्रा सुन रही हूँ रेडियो 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: You have listening to the hottest frequency of North Kashmir 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। शो है हंगामा, जहाँ पे आज हम लव, होप एंड मैजिक के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा जादू जो एक्चुअली कोई भी चीज़ खूबसूरत बना सकता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली जब कोई इंसान पहली बार महसूस करता है तो क्या लगता है, बहुत एंशियस लगता है, बहुत बेकरारी सी लगती है कि शायद मैं क्या सोच रहा हूँ, सच में ऐसा है कि सच में मैं किसी से प्यार कर सकता हूँ। फिर वो होप यानी कि वो उम्मीद जाग जाती है कि शायद आगे जो इंसान है वो भी शायद मुझे पसंद करता हो। इतनी सारी चीज़ें चलती हैं दिमाग में, बट कहते हैं कि सबसे पहला प्यार जो होता है वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस भी होता है और खूबसूरत भी। अब देखिए, डरावना क्यों होता है, क्योंकि आपको समझ नहीं होती कि क्या करना है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बिना सोचे प्यार करते हैं, जो कि आपका पहला प्यार होता है, वो इसीलिए सबसे खूबसूरत होता है। इस वजह से, क्योंकि जब आप किसी से बिना सोचे, बिना कुछ वापस मांगे, बिना कुछ वापस चाहे प्यार करते हैं, तो वो पूरी उम्र आपको याद रहता है। और यही खासियत पहले प्यार की है। और प्यार की बात करें और उम्मीद की भी बात करें, तो कई बार ऐसा होता है जब आप किसी इंसान से पहली बार प्यार करते हैं, ज़िंदगी में किसी इंसान से आपको मोहब्बत हो गई है, वो ज़रूरी नहीं है कि ये मोहब्बत पूरी हो। और वो मोहब्बत पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि हम कुछ सोचकर कंपैटिबिलिटी नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि आगे वाले इंसान को मैं पसंद हूँ कि नहीं हूँ। हम ये भी नहीं देखते कि क्या आगे वाला इंसान किसी पार्टनर को लाइक ढूंढ रहा है, somebody looking for somebody else। बट ये बात ज़रूर है कि पहला प्यार यूजुअली वो वन साइडेड होप में, वन साइडेड प्यार में रह जाता है। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जहाँ पे लाइक इवन हम मूवीज़ की बात करें तो ऐसी स्टोरीज़ हैं जहाँ पे आप किसी का पहला प्यार जो है वो अधूरा रह गया। रिफत भी मेरी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। बट ये जो प्यार है, मुश्किल तो है, कड़वा है, बट एक मिठास भी है इस प्यार में। और वो उन लोगों को पता चलती है जिनको कहते हैं ना कि एक्चुअली वो ये एहसास महसूस करते हैं, एंड वो लोग भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं बट इन अ वेरी डिफरेंट वे, जिनका प्यार अधूरा रह जाता है, जो वन साइडेड प्यार में फंस जाते हैं।
3: तू सफर मेरा है, तू ही मेरी।
2: देखिए, आज जो टॉपिक है वो बहुत खास है, इट्स रिलेटेड टू एवरीबडी। समहाउ हर कोई इंसान अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज से ज़रूर जाता है जहाँ पे वो किसी से प्यार करता है और वो प्यार वापस नहीं मिलता, या स्पेशली लाइक यू आर वेरी फॉर्चुनेट अगर आपको वो प्यार वापस मिला। और अगर मिला है या नहीं मिला है तो वो कहानियाँ कैसी होंगी, और वो कहानियाँ आप हम तक पहुँचाएंगे। 8899904904 इज़ अ नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स, व्हाट्सएप। मैं मोस्ट सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और देखिए, हंगामा पे आज प्यार का सुरूर छाया हुआ है। और अभी हमने कुछ देर पहले एक वन साइडेड प्यार के बारे में बात की, जो काफ़ी दुखी कॉन्सेप्ट है, बट अगर आर्टिस्टिकली देखें तो कहते हैं ना कि सच्ची वही कहानियाँ होती हैं जो एक्चुअली पूरी नहीं होती। बट अभी की बात करें, देर इज़ अनदर साइड ऑफ लव दैट यू शुड नो, दैट इज़ के प्यार मोहब्बत वाला सीन, चाहे कॉलेज में हो या कहीं पर भी यू एक्सपीरियंस, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी लाइक वो मस्ती होता है, मजाक होता है। और फॉर्चुनेटली फॉर पीपल जो एक्चुअली दोनों तरफ से एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, बस इतनी मोहब्बत।
2: आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया।
0: अब आप बताइए कि आपका घर है क्या आशिकी की कॉलोनी में, और बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका प्यार के साथ, होप के साथ अपनी जिंदगी में। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन। बात बात ट्रैक्स अबाउट लव।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम है जी, वेलकम द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे शो चल रहा है हंगामा, जहाँ होता है ड्रामा एंड इन्फॉर्मेशन। और देखिए, अभी की बात करें तो हम अभी प्यार के बारे में बात कर रहे हैं। प्यार, होप यानी कि उम्मीद, ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। और ऐसा लगता है कि भाई ऐसी चीज़ों में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई अभी मैं प्यार पे फोकस नहीं कर सकता, अभी मुझे करियर में कुछ करना है। बट अगर साइकोलॉजिकल बात करें, क्योंकि जो साइंटिफिक तौर पर अगर इस बारे में बात करें, तो एक्चुअली प्यार जो है, लव गिव्स यू अ रीज़न कि क्यों हम कोई काम करें। अगर हम अपनी लाइफ में बेटर हो रहे हैं, किसके लिए हो, एक कांस्टेंट अपनी लाइफ में होना जरूरी है। और होप यानी कि उम्मीद हमें वो बनने में मदद करती है कि कल को जो फ्यूचर है हमारा वो एकदम मस्त होने वाला है। So whosoever says that love is a waste of time, that is 100% false. But देखिए, कंडीशन हर चीज़ में होती है कि आप जिस इंसान के साथ प्यार करते हैं या आप जिस इंसान के साथ सेटल होना चाहते हैं, वो एक्चुअली इमोशनली काफ़ी इंटेलिजेंट होना चाहिए। बाकी इंडिफरेंसेस, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, एक बॉन्ड में आर्ग्यूमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बट डिसरिस्पेक्ट का स्कोप नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपना स्टैंडर्ड देखना चाहिए कि आप एक पार्टनर में क्या चाहते हैं। एक पार्टनर ऐसा हो जो काफ़ी एम्बिशियस हो, इमोशनली इंटेलिजेंट हो, अपने साथ साथ अपने जो आसपास के लोग हैं उनका भी ख्याल रखे। बिल्कुल नहीं, लव इज समथिंग दैट कीप्स दिस वर्ल्ड गोइंग, एंड अदरवाइज अदर देन लव, अदर देन आर्ट, अदर देन फीलिंग्स, दिस वर्ल्ड इज जस्ट अ पीस ऑफ रॉक।

क्या आपने वेस्ट ऑफ टाइम किया है, यानी कि कभी प्यार हुआ है आपको? 8899049904 इज नंबर, यू कैन कॉल और अपनी जो प्यार की कहानी है छुपके से हमें सुनाई। अच्छा लगता है, क्या मालूम कि आप अगर हमें कोई कहानी सुना रहे हैं, कोई और भी अपनी कहानी सुनाए और थोड़ा मैच हो जाए तो मजा आ जाए। मैं वास्तव सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। मैं बस यूं गई और यूं वापस आई, क्योंकि कुछ राग के बाद कुछ स्पेशल है।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: द गेम इज ऑन टून इन टू रेडियो चुनार 90.4 एफएम। Game on with RJ Asra. Only on Radio Tuna 90.4.

ये तो सिर्फ दो नंबर दे रहे हैं पर हम 10 के 10 दे रहे हैं. 8899904904 इज द नंबर. यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स, व्हाट्सएप. और अभी जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आप गेस करके हमें बता सकते हैं. और अभी बता दें तो सेगमेंट शुरू हो चुका है गेम ऑन, जहां मिलता है आपको स्पोर्ट्स का अपडेट, चाहे वो लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट हो रहा है. ऐसे कुछ फैक्ट्स जो होते हैं स्पोर्ट्स. एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स. मैं बस यूं गई वापस और यूं आई वापस, गई नहीं, यूं जाऊंगी और यूं वापस आऊंगी विद द स्पोर्ट्स अपडेट. मैं हूं असरा, सुन रही हूं रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है गेम ऑन.

रेडियो रेडियो चुनान 90.4 एफएम गेम ऑन विद आरजे असरा ओनली ऑन रेडियो चुनान 90.4 एफएम 4 एफएम

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
3: अरे वेलकम बैक टू द ऑरस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 FM और अभी चल रहा है गेम ऑन।

जहां मिलता है आपको स्पोर्ट्स का अपडेट, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स जो एक्चुअली आपको काफी इन्फॉर्मेट करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या है दुनिया में, कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं स्पोर्ट्स में जो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। बट ओ गुरु, इससे पहले कि मैं बताऊं कि आज का जो फैक्ट है या अपडेट है, आज का गाना सुन लेते हैं बस। सौदा है खरा खरा फ्रॉम द मूवी गुड न्यूज, बिकॉज आज है भी गुड न्यूज जो अपडेट है। एज पिछले कुछ गेम ऑन के एपिसोड्स में हमने आपको बताया था कि गेम ऑन जो चल रहा है वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 यूनाइटेड किंगडम्स इंग्लैंड में चल रहा है, और कुछ यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, इंडियन जो एथलीट्स हैं वो भी जा रहे हैं। और अगर आज की बात करें तो मुरली श्री शंकर और गुलवीर सिंह, मुरली श्री शंकर ने जीता है सिल्वर मेडल फॉर मेन्स लॉन्ग जंप, एंड गुलवीर सिंह जो है एक एथलीट है, उन्होंने भी सिल्वर जीता है इन मेंस 10,000 मीटर रेस। अरे ये स्पॉइल करने वाली बात नहीं है, बल्कि एकदम चकाचक मस्त बात है कि इंडियन एथलीट्स आर डूइंग सो मच गुड इन देयर स्पोर्ट्स एंड दे आर डूइंग सो ग्रेट। मैं वस्त्रा सुन रही हूँ रेडियो सुना 90.4 एफएम। अभी भी कुछ वक्त बचा है आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन का, तो जल्दी से फोन उठाइए और अपने दिल की बात हम तक पहुँचाइए। मैं वस्त्रा सुन रही हूँ रेडियो सुना

0: बहुत ही मजा है। और जैसे कि आज हम बहुत ही प्यार क्या है राहुल इसके बारे में बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जुड़े भी, उन्होंने अपनी बातें कही, उन्होंने अपनी स्टोरीज कही, तो काफी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मस्त तरीके से बात करते हैं हमारे साथ। देखिए जाते जाते सिर्फ देसी बीट बजानी, सिर्फ वो नहीं बल्कि अंग्रेजी बीट भी बजेगी।
1: अंग्रेजी बीट
0: जी हाँ, देखा मैंने कहा था मैं अंग्रेजी बीट बजाऊंगी और बजा भी रही हूँ। मैं मस्त सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते हमेशा मैं यही कहती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी सोल को रिचार्ज करना ना भूलें। देखिए चार्ज करना ज़रूरी है, और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए, क्योंकि जब तक क्रेजी नहीं होता तब तक मेमोरीज नहीं बनती, तब तक मज़ा नहीं आता। और जाते जाते बस इतना ही कि अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो सुनार द हॉरस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर। Signing off for today. Oh, we're in it. Out.

0: ਖਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਦਾ ਲੈ ਲਾ।
1: ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: टीचर्स आर नॉट जस्ट रोल मॉडल्स, दे आर द गाइडिंग फोर्स टू शेप द करियर एंड कैरेक्टर ऑफ ए स्टूडेंट। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान तशरीफ आवर हो चुके हैं। मैं हूं साहिल मुजफ्फर फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ रेडियो चिनार 90.4 FM। एक ऐसी टीचर जिनको स्टेट का बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है, जिनको नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड मिला है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको बहुत बार नवाजा गया है। टुडे वी हैव विद अस द वन एंड ओनली हुमैरा सईद। हुमैरा जी, आपका हम वेलकम करते हैं ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑफ रेडियो चिनार 90.4 FM। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, हाउ आर यू फीलिंग बीइंग सेकंड टाइम इन आवर स्टूडियो?
4: पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी साहिल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी देयर, कि पहले सब ऑडियंस को जो मुझे इस टाइम देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रियली इट वाज द प्लेजर मोमेंट फॉर मी दिस टाइम टू बी हियर इन योर स्टूडियो एंड इट वाज माय सेकंड टाइम टू बी हियर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो आप प्रोग्राम्स करते हैं उन प्रोग्राम्स की नवियत को देख के अगर हम बताएंगे कि हर एक इंफॉर्मेटिव ही होता है। अगर बहिस्सत उस्ताद आपने मुझे दावत दी है स्टूडियो में, मैं आपके प्रोग्राम्स अक्सर देखती रहती हूँ, जो भी आपका प्रोग्राम होता है काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि आज का प्रोग्राम जो है ये भी बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा।
3: जी बिल्कुल, आज वी आर थिंकिंग कि हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि यू आर ए टीचर और आपने अपने टीचिंग करियर में बहुत सारे चैलेंजेस देखे, अप एंड डाउन्स देखे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। एज ए टीचर आपकी एक्सपीरियंसेस डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट रही होंगी और जब हम आज की डेट में अपनी सोसाइटी पे नज़र डालते हैं तो सोशल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, जो रिलीजियस वैल्यूज़ है हमारे कल्चर के, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि उनको एक बार फिर से वो रिफ्रेश करने की जरूरत है। एज अ टीचर, एज अ मदर, आप क्या सोचती हैं, समझती हैं इस बारे में, कितनी जरूरत है?
4: साहिल साहब, ठीक है कि जो आपने बात फरमाई, तो ऐसा है कि आप लोगों को भी पता होगा कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो मॉरल एजुकेशन बहुत दिया जाता था स्कूल में।
3: बिल्कुल,
4: नाउएडेज वी डोंट हैव टाइम, उसके लिए वक्त ही नहीं है कि मॉरल एजुकेशन बच्चों को दिया जाए। क्यों नहीं है कि सुबह हम मॉर्निंग असेंबली में चले जाते हैं, मॉर्निंग असेंबली बच्चे ने अटेंड किया तो डायरेक्ट वो चला गया क्लास बिल्कुल वो क्लास में चला गया। क्लास में जो ही वो गया तो उसकी चाहे फिजिक्स की क्लास हो, बायोलॉजी की क्लास हो, इंग्लिश की क्लास हो, तो वो उस क्लास में चला गया। उसके बाद डायरेक्टली वो क्लास खत्म होने के बाद वो दूसरी क्लास में चला जाता है, जाता है कि नहीं? उसके बाद उसकी क्लासें खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली घर चला जाता है।

0: after having the backdoor of tuitions. All the time engage
1: बिल्कुल
0: with books. को ये चीज है कि वो कहते ना कि सोशल लाइफ उसकी खत्म हो गई है. सोसाइटी में एक बच्चे का उठना बैठना सोसाइटी वालों का वो कहते ना कि उस पे नजर रखना वो बहुत कम रह गया है
1: जी. और एज अ टीचर अगर हम आपसे जानना चाहें ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, शाम को वो वापस आता है और वो अपनी ही दुनिया में मस्त है. शायद पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चे की देखरेख उस तरीके से करे जिस तरीके से करनी चाहिए. और टीचर्स का ये है कि वो भी अपने जॉब एज टीचिंग जॉब 4 बजे तक उनका खत्म होता है, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है. तो आपने, मैंने जैसे आपको बताया कि आप एक माँ भी हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं, तो ये बैलेंस कैसे बरकरार रहेगा?
0: साहिल साहब देखें, आपके हम भी कहते हैं कि पहला जो दर्श का होता है वो घर से ही स्टार्ट होता है.
1: बिल्कुल
0: ठीक है ना. माँ सबसे बड़ा दर्श का, माँ की तालीम सबसे बड़ा हिल,
1: बिल्कुल
0: बाप की परवरिश सबसे बड़ी परवरिश. ठीक है, बच्चा तो सबसे ज्यादा वक्त स्पेंड घर में ही करता है ना. आजकल के जमाने में बींग ए मदर बींग ए टीचर, मैं आपको ये बताऊंगी कि जिस बच्चे की अच्छी तरबियत घर में हो जाती है ना, वो सोसाइटी में डील भी अच्छी तरह से करता
1: है, वो स्कूल में भी अच्छा होता है,
0: वो स्कूल में भी अच्छा होता है. मैं आपको बताऊंगी कि आजकल के जमाने में बैलेंस होना चाहिए रिलीजियस नॉलेज एज वेल एज यू हैव दुनियाई नॉलेज.
1: बिल्कुल
0: ठीक है ना, दुनियाई तदीनी तालीम
1: दोनों बैलेंस बराबर
0: बैलेंस होनी चाहिए. उससे क्या होगा कि जो हमारी सोसाइटी है सोसाइटी में खराबियां कम हो जाएंगी, क्योंकि जब उनको घर से ही सिखाया जाएगा कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग वो वैसे ही चलेंगे. आई विल गिव यू एग्जांपल, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको घर में पढ़ाई का माहौल तो नहीं होता है लेकिन वो सोसाइटी में एक्सेल कर लेते हैं.
1: बिल्कुल मेहनत करते हैं,
0: मेहनत करते हैं. मैं आपको बताऊंगी घर का जो माहौल है उसको देख के उनको ये लगता है दैट वी आल्सो वांट टू बी द In the front.
1: Right, right. वो भी वो family में वो role models बनना चाहते, example set करना चाहते.
0: मैं बताऊंगी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस्ताद को देख के कहते हैं कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार काश मैं भी अपने उस्ताद की बुलंदी तक.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और पहले जमाने में जब हम स्कूल जाया करते थे, मैं बात कर रहा हूँ जब हमारा स्कूल कॉलेज था 2000 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, हम ये सोचते थे कि जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं मुझे बड़ा हो के इन जैसे बनना है, इन जैसे चलना है, इन जैसे कपड़े पहनने हैं, इन जैसे इज्जत कमानी है. क्या आज की डेट में भी स्कूल्स में ऐसा है? क्योंकि आप 10+2 हायर सेकेंडरी में हैं जहाँ पे बच्चे नो बालिग होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं जिनको फहम होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, वो जिंदगी के उस कगार पे होते हैं जहाँ से उनको अपनी उड़ान आगे बढ़नी है. तो क्या वो भी ये सोचते हैं समझते हैं कि हमें अपने उस्ताद जैसा बनना है, कि कहीं ना कहीं आपको चेंज लग रहा है अपने स्कूल डेज और आज के स्कूल?
0: साहिल साहब मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि नहीं, बिल्कुल जी, यो कहते ना कि वो माहौल कहीं तो चेंज हुआ है, कहीं तो चेंज हुआ है, लेकिन व्हेन अ टीचर इज गोइंग टू फोकस,
1: बिल्कुल
0: वो अपने सब्जेक्ट पे फोकस करेगा, वो अपने स्टूडेंट पे फोकस करेगा, वो अपने क्लास पे फोकस करेगा, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे में खराबी है. बच्चा खराब नहीं
1: है, नहीं बिल्कुल,
0: वो तो मैच्योर ही नहीं होता ना पूरी तरह से, उसको खराब कैसे कहेंगे. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ अ टीचर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ द फैमिली.
1: बिल्कुल
0: कि वो उनको उनके सेटअप में बहुत मदद करें. मैं आपको बताऊंगी घर में सुबह बच्चा उठता है, उसको बताओ इफ ही और शी इज बिलोंगिंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, उसको बताओ कि आपको सुबह उठ के क्या करना है, पहले रब के सामने सर झुकाना है
1: या किसी भी रिलीजन के साथ है,
0: शी इज रिलेटेड विद सिखिज्म और हिंदुइज्म, उनको बताओ, क्योंकि हर एक मजहब ये कहता है कि पहले रब है उसके बाद सब है.
1: बिल्कुल क्या बात है,
0: ठीक है ना.
1: अगर हम ये कहें कि जो इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड व्हाट आई हैव सीन, जितने भी बच्चे हैं एवरीबॉडी इज टैलेंटेड इन वन और द अदर वे, हर किसी इंसान को ऊपर वाले ने कोई ना कोई चीज दूसरे से जुदा दी है, अलग दी है, जिसको वो लाइफ में आगे बढ़ा के उस पे सही तरीके से काम करके कामयाब होता है. कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई किसी की आईक्यू लेवल बहुत अच्छी है. तो इस टैलेंट को चैनलाइज करने की जरूरत है, और ये चैनलाइज या तो घर में माँ बाप करते हैं, और फाइनली जो ज्यादा जिम्मेदारी मुझे लगता है स्कूल में इस टैलेंट को चैनलाइज करना और सही रास्ते पे लाना, ये एक उस्ताद की जिम्मेदारी है, तभी वो बच्चा जाके आगे कामयाब होता है और एक्सेल करता है. क्या आपको लगता है कि उस

0: टैलेंट को चैनलाइज करने में कहीं पे चूक हो रही है?
1: हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। साहिल जी देखिए, आपसे मैं एक बात कहूंगी, इफ द स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन द मेडिकल स्ट्रीम, उसको आप सपोर्ट दें, ना कि उसको ये बताएं नो पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट स्ट्रीम, आप ये ना लें। इफ द स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन नॉन मेड और उसका कोई बच्चा ऐसा है उसको फोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती है, कोई बच्चा ऐसा उसको आर्ट एंड कल्चर अच्छा लगता है, कोई बच्चा ऐसा उसको म्यूजिक अच्छा लगता है, जिस चीज में वो आगे जाना चाहता है उसमें सपोर्ट बन के रहें आप। उस्ताद को भी चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए, क्योंकि वो उसी फील्ड में एक्सेल ज्यादा करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है। व्हेन यू हैव इंटरेस्ट इन समवन तो ऑब्वियसली आप उसमें मेहनत भी करोगे, ऑब्वियसली उसमें वो एक्सेल भी करेगा, बनिस्बत वो चीज हम करें जो हमारा हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। सिंपली आई विल गिव यू एग्जांपल, वी हैव स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आल्सो, एक बच्चा था छोटा सा था तो ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो आगे आगे चला थोड़ा सा उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था दैट इज आल्सो रिलेटेड विद द म्यूजिक। हाँ, तो स्कूल में वो आया, स्कूल में भी वो जब भी हमारा कोई प्रोग्राम हुआ करता था He always try to be there in the program. वो आता था उस प्रोग्राम में, लेकिन अल्लाह ताला का फजल और करम ऐसा है कि वो बच्चा नेशनल लेवल तक गया।
0: क्या बात,
1: नेशनल लेवल तक गया, और अल्लाह ताला का फजल और करम ऐसा था कि उस्तादों की गाइडेंस में उसने पढ़ाई भी अच्छी तरह से की
0: और अपना पैशन भी फॉलो किया,
1: और आज आप देखेंगे कि वो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुका है और अल्लाह ताला सुन फजल कि उसने फनकारी कश्मीर का अवार्ड भी लिया।
0: क्या बात है, और यही है कि जब आप टैलेंट को सही तरीके से चैनलाइज करते हैं,
1: इट डजंट मीन कि आप लोग ये बताएंगे देयर आर ओनली डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, उसके अलावा फील्ड्स बहुत ज्यादा है। आप बच्चे को अच्छा शहरी बनाएं, उसको जिम्मेदार शहरी बनाएं, उसमें अच्छी तरबियत पैदा करें। उस्ताद का काम तो वही है ना, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक द हेल्दियर पर्सनालिटी इन द सोसाइटी देन एंड देन वी कैन से दैट द सोसाइटी इज एक्सेलिंग।
0: जी बिल्कुल,
1: तभी तो सोसाइटी बनेगी ना।
0: हुमैरा जी, आप बहुत स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं और आपको ये भी मौका मिलता है कि आप उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं, कभी स्कूल्स में जब पेरेंट्स आते हैं, पीटीएम्स होते हैं या कोई इवेंट होगा या किसी बच्चे ने कोई शरारत की, उसके माँ बाप को बुलाया, उसके फादर को बुलाया, और आज की डेट में अगर हम स्पेशली अक्रॉस द वर्ल्ड देखें या फिर हम कश्मीर पे आए, बच्चों की जो ओवर पैम्परिंग है घर में, लाड प्यार है माँ बाप का हद से ज़्यादा, जो चीज़ वो मांगते हैं उससे दुगना उनको देते हैं छोटी उम्र से ही, और आगे चल के ये होता है कि वो बच्चे बिगड़ जाते हैं और उनको कंट्रोल करना फिर मुश्किल होता है, और फिर वही स्कूल में भी इंडिसिप्लिन करते हैं, और जब वो न घर में होंगे न स्कूल में होंगे, किसी मार्केट में होंगे, सोसाइटी की किसी कॉलोनी में होंगे, किसी ग्राउंड में होंगे, अपनी दोस्तों के साथ होंगे, तो इमोरल एक्टिविटीज भी बढ़ जाती है क्योंकि उन पे किसी का कंट्रोल ही नहीं रहता। क्या आपने ये महसूस किया है कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है?
1: बिल्कुल ठीक करने की ज़रूरत है, क्यों नहीं ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन ये मैं बताऊंगी, एज अ टीचर मुझे लगता है कि बच्चों में कमियां नहीं है, बच्चों में कमियां नहीं है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स में भी कमी है और कहीं ना कहीं उस्ताद में भी कमी है। जब उस्ताद अपना अच्छा देगा ना, बच्चा कभी ख़राब ही नहीं होगा, जब टीचर अपना बेस्ट देगा बच्चा कभी ख़राब नहीं होगा। मैं आपको ये बताऊंगी, अनमोल्डेड क्ले होता है बच्चा, जैसा शेप देंगे वैसा वो बनेगा।
0: So, टीचर की जो आपने बात की, जो 100% एक टीचर की अकाउंटेबिलिटी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप स्कूल में आए, क्लास पढ़ाई, टीचर की बहुत जिम्मेदारी है। और ऐसा भी है, आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमारी सोसाइटीज में ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सुबह घर से निकलते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं अपने बच्चों के पढ़ाई के खर्चे के लिए, और उनको इस भरोसे स्कूल भेजते हैं कि ये टीचर मेरे बच्चे का मुस्तकबिल संवारेगा, और उस टीचर की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी ईमानदारी के साथ उस खून पसीने की कमाई की मेहनत को कहीं पे वो कशीर पर्श वरना बुट खा ले, और ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो गैप है हम देख रहे हैं, ये बहुत हद तक बढ़ रहा है, इसको कहीं पे कम करने की या तो शायद कोशिश नहीं हो रही, या अगर कोई कर भी रहा है तो नहीं हो रहा है, जिसके एडवर्स इफेक्ट्स हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं, चाहे कितने भी इमोरल एक्टिविटीज हैं। फिर वहीं पे बात आती है, ये कह में गारुक शी कत सुकूल शुपारान ई क्या गो साइन सोसाइटी, फिर हम घर में सीना पीटते हैं कि मन साइन वचन क्या गो। मैंने पहले ही बताया, आप खुद माँ हैं, एक टीचर है, तब आप क्या सोचती हैं कि जब ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, या आपको लगता है कि इसको हम किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एट द अर्लीस्ट?
1: साहिल देखो, आपको मैं एक चीज़ बताऊँगी कि जब बच्चा है ना, मैं फिर से एक बात

0: कल आपने देखा कि कुछ बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया और उन बच्चों ने किया कि जो फर्स्ट लर्नर्स ऑफ द फैमिली है.
1: बिल्कुल.
0: तिमन ओस न गरस मस पढ़ना न बापत कहाँ ट्यूशन तिमन ओस न कहाँ सो यूस इस वनों की इमन गो गरस मस अन का दर्स दिन खत तिमन तोर पैनिस मोइलिस माजून मोहिम फेकरे तिमो को रीड. अब ऐसा कोई बच्चा है येमिस मस मेच्योरिटी बढ़िया दस्ती छ कहाँ बच्चा सन तिस यूस न बड़ा बड़ा छ मगर मेच्योर छ लगा सन कि सुजा सन शुरू. बहरहाल अल्लाह ताला मैं बताऊंगी कि अल्लाह ताला के फजल करम से जितना अच्छा उस्ताद और पेरेंट्स करेंगे ना सोसाइटी उतनी अच्छी बनेगी. क्या उस्ताद को नेशन बिल्डर कहा जाता है, नेशन को बनाने वाला. इस नेशन को बनाने के लिए हमें बहुतों की जरूरत पड़ेगी. बहिस्सियत आप इसने मुझे आप लोगों ने इस टाइम मुझे यहाँ पे बुलाया, ये बात बहुत लोगों तक जाएगी. मैं तो हर एक घर में नहीं जा सकती थी, बहिस्सियत आप लोगों की बात आके जाएगी. तो आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा इसके अंदर.
1: बिल्कुल, ये कड़ी बनती है, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये आवाज पूरी दुनिया
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर. अगर टीचर बात करता है लेकिन आवाम तक तो आप पहुंचाने वाले हैं ना, तो आप भी तो एक पिलर बन गए ना इसके, सोसाइटी एक पिलर
1: हिस्सेदार
0: हिस्सेदार आप भी बन गए. सो इट इज अ जॉइंट वेंचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल साइड्स. मैं आपको बताऊंगी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम जो है बहुत सपोर्ट करती है. स्कूलों में प्रोग्राम्स अलग अलग जिन जगहों पर कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाता है हमारी मिनिस्ट्री को इस टाइम लेके. कल हमारे सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल गसन तिथ चमकिन के प्राइवेट स्कूल गसन तिथ आस कि चलो उसको आगे बढ़ाते हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ाते हैं. बहिस्सियत उस्ताद अगर मैं अपने स्कूल में हूँ मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगी. अगर हमारे स्कूल में किसी चीज़ की कमी है, मैंने वो भी उस्ताद देखे हैं साहिल साहब जो अपने जेब से पैसा निकाल के स्कूल की डेवलपमेंट में लगा.
1: बिल्कुल,
0: उस्ताद को ऐसा है कि किसी बच्चे को किसी बच्चे पर नजर नहीं पड़ती है.
1: पहुंचते हैं कि पेरेंट्स को अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभानी पड़ेगी.
0: बिल्कुल.
1: और जो टीचर्स है उनके कंधों पे जो जिम्मेदारी है, उन्होंने जो अपने आप से वादा किया है, वो जिस प्रोफेशन में है उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी है. और जो सोसाइटी में लोग हैं उनको भी बड़े हसास तरीके से मॉनिटर करना है, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, कहाँ पे हमें बच्चों की तरबियत सही तरीके से करनी है. और जब हम शायद मिल बांट के इस काम में लगेंगे तो शायद वो दिन दूर नहीं जब हमारे सोसाइटी से जो इविल एक्टिविटीज़ हैं वो दूर हो जाएंगी. और एक बार फिर से जैसे आपने कहा कि आज से 20-30 साल पहले जो माहौल हुआ करता था, I'm not saying technology as part of our life. Let's utilize this in a positive way. और इस technology से सीखें. और जो बच्चे भी देख रहे हैं हमें और आपके बहुत सारे fans हैं, मैं चाहूँगा कि आप उन teachers के लिए, parents के लिए, अपने students के लिए आखिर में एक short message दें.
0: Message तो मैं यही दूंगी कि supportive रहें, lovable रहें, क्योंकि बांटने से प्यार बढ़ता है, मोहब्बत ज्यादा हो जाती है दिलों में. और इल्म के बारे में मैं ये बताऊंगी, अपने बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने कलम पे फोकस करें. मोबाइल फोन कुछ नहीं देने वाले, कुछ भी नहीं देगा, है सबके घरों में. आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो आपको खुद पता है, ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल एजुकेशन ने जब स्टार्ट किया ज्यूरिंग कोविड पैनमिक 19, तो हमने बच्चों को फोन दे दिया. ये मिस मोइल इसने दह रुपये ते आस चंदस मज क्यों सुबह दहन सासन हूँ फोन अन खतर मजबूर तेम दूत बच्चस क्या इस दोपहर में बच्चे गए थे ना पार्नर रोस रोज उनके एनस गए थे घर समझ पार्नर. आज हम बच्चे को वही फोन छीनते हैं, दिया तो हमने ही ना, आज हम उसको बोलते हैं वापस दे दो, वो देने के लिए तैयार क्यों नहीं है. उसने तब उस फोन को पकड़ा जब उसको हाथ में पकड़ने की वो एज थी ना कि तेमिस दिमो तमाशा थस क्या था तेम रोड तमाश बदलो फोन आ थस क्या था तेमिस बासा हुई सोई तमाश मुझे उसे दिन खतर वापस तैयार की. लेकिन मैं बहिस्सियत एक माँ, बहिस्सियत एक पेरेंट, बहिस्सियत एक उस्ताद रिक्वेस्ट बच्चों से करूँगी कि आप फोकस करें किताबों पर, आप फोकस करें अपने कलम पर, आप फोकस करें अपने इल्म पर. जो वो देता है वो और कोई नहीं देता है, बस बहिस्सियत उस्ताद. हम सब उस्ताद आपके साथ हैं, जिस स्कूल में भी जो भी उस्ताद है वो हर हमेशा हर एक बच्चे के साथ है.
1: बिल्कुल,
0: हर एक बच्चे के साथ है. कभी भी उस्ताद ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा नाम ना कमाए. ये तो फख्र है हमारे लिए कि मेरा बच्चा कल को मेरे से ज्यादा बुलंदी पे पहुंचे. ये हर एक उस्ताद का सपना होता है.
1: बिल्कुल,
0: खुदा करे कि उनको हर एक बच्चे को बुलंदी तक ले जाए और हमारी जो मेहनत है वो भी
1: रंग लाए. कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी इसी उम्मीद में है कि इंशाल्लाह हमारे जो

सोसाइटी में जो छोटे छोटे इश्यूज हैं वो हम सॉल्व करेंगे, मिल बैठ के सब करेंगे और अपनी सोसाइटी को एक रोल मॉडल बनाएंगे। इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैविंग यू इन आवर स्टूडियो। मैं कुछ सवालात हमारी थर्ड कॉन्वर्जेशन के लिए रखता हूँ, क्योंकि वी लव टू सी यू हियर, यू नो, कीप कमिंग हियर बिकॉज यू आर एन इंस्पिरेशन। आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर रही हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे उस्ताद हमारी

0: की तरफ से यू नो आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप यहाँ पे आई, और उम्मीद यही है कि टिल द टाइम वी मीट अगेन लेट्स सेपरेट सम लव एंड सेपरेट सम स्माइल्स.
1: थैंक यू वेरी मच सर.
0: थैंक यू सो मच. सो दिस वॉज द स्पेशल कॉन्वर्जेशन विद हुमैरा सईद. इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द होगी फिर मुलाकात. अल्लाह निगहबान.
2: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-400-64-1800-180-7178 1-800-180-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: कोक स्टूडियो भारत, सब्सक्राइब नाउ।
2: आदिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मसनद सुनो।

0: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: Pani. Pani ek aisi namat hai jiske bagair hum apni zindagi ka tasavvur nahi kar sakte. दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है. पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है. पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है. आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए.
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Çınar Beats ve Darce Diva, only on Radio Çınar 90.4 FM.

It's Vedhar Chediva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: અરે કિનારા તો સ્થિર ને સલામત હોય.
1: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
1: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
2: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन.
2: रेडियो चुनार 90.4 FM.
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम.
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM.

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज।

0: रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के नाम।

0: करार आ जाए।
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: कभी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम। मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
2: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.
0: Dil ko karar aa jaye jab bhi aaye suhani shaam, dabi yaadein महक जाए जब भी आए सुहानी शाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जितेंद्र की।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जितेंद्र की।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जितेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जितेंद्र के लिए।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको दौड़ कुछ नहीं कहते, मगर

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा तुम लोग।

कष्टी जी चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे चोली।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना
1: सा

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे

थोड़ा सा लंबा लंबा सांस, धीरे धीरे उसने खींचा, आ हा हा, फिर उसका पल्लू बनके उसका दास, धीरे धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा, हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: और बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की मुश्किल।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।